0: सुरक्षित जीवन जिउन जीवन बीमा जरुरी छ। रिलायबल लाइफ सधैँ भरिलाई।
1: अब दाँत भर्ने, दाँत फाल्ने, नयाँ दाँत राख्ने, दाँत सफा गर्ने, चम्किलो बनाउने, बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने, इम्प्लान्ट सर्जरी आदि, दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा। प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-7994, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सबै कनेक्टेड।

0: प्राइम डेंटल क्लिनिक।
1: प्राइम डेंटल क्लिनिक नया अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिक में अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दांग तुलसीपुर चोक देखि 50 मीटर पश्चिम रोड में। संपर्क नंबर 082-591-794, मोबाइल नंबर 98-22-87-74-94।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङको तुलसीपुरमा थारू अगुवा सख्या नाच संरक्षण जुटलबाट सोमबार तुलसीपुरमा दशैंको तथा थारू सम्बद्ध 264 अवसरमा सख्या रूपयाँ नाच प्रदर्शन करगिल रह मटावा बर्गर बलबंसा संघ तुलसीपुर नमूना भौयार थान संरक्षण समिति तुलसीपुर ओ थारू कल्याणकारी सभा दाङ 3 ओ तुलसीपुर नगर स्तरीय समितिको संयुक्त आयोजनामा दाङको जबरपुरमा उक्त कार्यक्रम हुलक हो। मटावा बर्गर बलबंसा तुलसीपुरका अध्यक्ष भुजौना चौधरीको अध्यक्षतामा हुलो कार्यक्रममा बरपौना लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले पाछक समय थारू समुदायको हरेक पहिचान हरेक लगलग कति संरक्षण गर्नतर्फ उहाँ आग्रह गरिरहल। उ अवसरमा थारू कल्याणकारी सभाका केन्द्रीय पार्षद शरमलाल चौधरी थारू राजा दंगी शरण संरक्षण समितिका अध्यक्ष जनकुलाल चौधरी लगायत थारू अगुवाको नक्से मन्तव्य व्यक्त गरल रह। नमूना भुइयार थान तुलसीपुरका अध्यक्ष रामशरण चौधरीले थारू समुदायको संस्कार संस्कृति संरक्षण करकलाग असिन कार्यक्रम करगिलक बटल रह। कार्यक्रमको सहजीकरण नारायण चौधरी करल रह। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड विपरीत इन्टरनेट सेवा संचालन करलग कति 14 इन्टरनेट सेवा प्रदायक हन रू 50,000 दर्श जरिवाना कैराखल। प्राधिकरणले जारी करलक अनुमति पत्रक शर्त विपरीत काम करलक निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रतिवेदन से पुष्टि हुई पाछ दूरसंचार एन 2053 का दफा 47 क 1 बमोजिम ऊ सेव प्रदायक हुनकला जरिवाना करना निर्णय करगिलक प्राधिकरण से आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जना राखल। प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृत प्याकेज अनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध निकरिलक तोगिल सेवे बढ़ी शुल्क लेलक हो। स्वीकृत प्याकेज से फरक प्याकेज बनाकन बिक्री करलक तथा उस्तक प्याकेज बारे सेवा ग्राहीन तोगिलक समयमा जानकारी निदेलक लगायतका विषयमा कार्यवाही करगिलक हो। प्राधिकरणले स्वीकृत करलक इन्टरनेट गति ओ प्याकेज अनुसार सेवा उपलब्ध निकरिना तथा स्वीकृत दरसे फे शुल्क लेना कार्य उपभोक्ताको हित विपरीत हुलक जनिती असिन गतिविधि नियन्त्रण गर कार्यवाही करगिलक प्रवक्ता अर्याल बटुवा राख्ल। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर चाडपर्व लघु आइलसँग सुरक्षा अवस्थान कड़ा बनिती लागराखल। हिन्दू नेपालीको महान दशैं पर्व दशैं ओ तिहार लघु आइलसँग तुलसीपुर बजारमा नागरिक हुकनक चहल पर भर्ना हुलक हुँसे सम्भावित चोरी लुटपाट ओ ठगी से बचकला सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन करगिल्बा। विशेष गरिकन वित्तीय कारोबार हुना बैंक आईएमए सुनचाँदीको पसल ओ नागरिक बढ़ी भीड़भाड़ हुना सार्वजनिक क्षेत्र हन निगरानी करगिलक इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको डीएसपी होम बहादुर पराजुली पटवा रखल। प्रहरी से शंकास्पद अलगलग गाड़ी से व्यक्ति समेत हन खानतलाशी ओ चेकजाज करनाबा उसक बजार ओ आसपासका क्षेत्रमा मोबाइल टोली क्यूआर टी ओ सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन करगिलक डीएसपी पराजुली बटवा रखल। प्रहरीले कहुँ शंकास्पद गतिविधि करलक देखिलसे प्रहरीका पैसा निलग्ना हटलाइन नम्बर 100 फोन कैकन जानकारी दिए आम नागरिक हुकनकला आग्रह गरिरहल। हरेक घटनाका जानकारी सकुरिन्से पहिले नागरिक हुकनकला थाहा हुना हुलक हुँसे समाजमा हुना अवांछनीय क्रियाकलाप न्यूनीकरणका लागि सबको जानक सहयोगको आवश्यक रहलक पराजुली बटवा रखल। प्रहरीले तुलसीपुर से जिल्ला बाहर जिना ओ भित्रना गाड़ीमा समेत निगरानी बढ़िलक बढ़ाराखल। तुलसीपुर बजार अन्तर्गत दशमर गुमराह चोक पश्चिम पातु खोल्लाको पुल उत्तर हो डाँडा पातु ओ पूर्वमा हात्ती खुवा यी चार किल्ला भित्र सकुरिन्से बढ़ी प्रहरी परिचालन करगिल्बा। हुइठा आज थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजा फे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्षक सबको संग्रहणसँग म शालिग्राम चौधरी विदाहितु रिजी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड।
1: बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर बसंत खत्री अब हरेक दिन दिव्य फार्मेसी घोराई दाङमा
2: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू
1: नवजात शिशु तथा बाल बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण
2: बाल बालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँच
1: ज्वरो रुगाखोकी तथा संक्रमणको उपचार
2: पोषण तथा वृद्धि विकास सम्बन्धी परामर्श
1: खोप सम्बन्धी परामर्श
2: नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा हेरचाह
1: बाल बालिका सामान्य तथा दीर्घ रोगको उपचार
2: नोट फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ
1: सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-410 98-478-28913 98-478-26163।

0: प्रकार को रसायन केमिकल नमिसाइए शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवन को अत्याधुनिक मिल में उत्पादित शुद्ध तोरी को तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेड का प्रीमियम उत्पादन।
1: अब दाँत भर्ने दाँत फाल्ने नयाँ दाँत राख्ने दाँत सफा गर्ने चम्किलो बनाउने बाङ्गो टिङ्गो दाँत मिलाउने इम्प्लान्ट सर्जरी आदि दाँत मुख गिजा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार एकै ठाउँमा प्राइम डेन्टल क्लिनिक।
2: प्राइम डेन्टल क्लिनिक नयाँ अत्याधुनिक बिरामी मैत्री क्लिनिकमा अनुभवी चिकित्सक डाक्टर आयुष गौतम तथा अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा उपचार भइरहेको छ। स्थान घोराई दाङ तुलसीपुर चोकदेखि 50 मिटर पश्चिम रोडमा। सम्पर्क नम्बर 082-591-794, मोबाइल नम्बर 98-22-87-74-94।